0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: गजल पेशे खिदमत है हसर तुम्हानी की।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले।

0: लोकल एक्शन, उनको आज टिकचल सिंह उनका केस चल रहा था कि वो सही तरीके से नहीं लड़े क्योंकि उनकी रास की मसला था। तो उनने अपना केस टिकचल सिंह एक्सक्यूएल से में भेजा हुआ था और उनने आज कोपेनहेगन कमून को कहा है कि आप इस मामले में सच्चे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको एक किस्म का डिस्क्वालिफिकेशन मिल गया
1: तो इसका
0: और वो
1: मतलब
0: कोर्ट
1: है
0: जा
1: कि
0: सकते।
1: अशरफ आगा जो है उनकी सीट पर आ जाएंगे या दोबारा इलेक्शन होगा?
0: सब ये तो एक वो तो उसकी सीट पे आ जाएंगे, मगर मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं चाहती कि दोबारा इलेक्शन हो, मगर जो डेनमार्क के एक्सपर्ट्स हैं और कुछ हैं उनने रफ्फर डाला हुआ है कि दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं सही नहीं थी और बेस सही नहीं था। मगर उसका फायदा तो कोई नहीं है क्योंकि एक सीट के पीछे आप इलेक्शन कराना चाहेंगे कि पूरा इलेक्शन कराना चाहेंगे, तो ये इसका कोई क्या कहते हैं नतीजा नहीं है। तो यही बनेगा आखिर में, यही मेरे ख्याल से होगा कि हाशम जो है उसको सीट मिल जाएगी और फिर क्या कहते हैं वो भाई कोने पच्ची को अस्पिछया करेगा जो अगले 3 साल होंगे ना नेक्स्ट इलेक्शन तक, यही इसका नतीजा आ रहा है। और जो सिकंदर भाई हैं वो फिर अब पार्टी के अंदर अपनी को बिल्डअप करेंगे और डेफिनेटली पार्लियामेंट के इलेक्शन, रीजन के इलेक्शन, कमून के इलेक्शन, उसकी तैयारी और उसकी प्रिपरेशन में करेंगे और यही कर सकते हैं वो, और आशम और अपनी पार्टी को सपोर्ट कर
1: इसका
0: सकते हैं
1: मतलब
0: मतलब।
1: उनके पास खुला टाइम होगा, आने वाले इलेक्शन को फोकस करेंगे।
0: मेरे ख्याल से तो यही करेंगे और इस चीज को क्या कहते हैं देखेंगे, बाकी अपनी उनकी अपनी राय है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ये तो अब उनकी लीगली टीम और वो सोचेंगे। मगर ये खबर तो यही है कि उनने अपनी फैसला यही किया कि वो कोर्ट में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो बहुत बहुत सारा टाइम लगेगा और हो सकता है वो अगले इलेक्शन तक क्या कहते हैं फैसला ना आए तो
1: तो फिर ये तो
0: फिर उसका कोई
1: फ्रीक
0: फायदा
1: रोने
0: तो।
1: को ये ठीक है, ये अखबारी अखबारात में या कानूनी पेचीदगियाँ जो वो तो साथ साथ चलती रहती हैं, चलती भी रहेंगी आने वाले वक्तों में भी, लेकिन अगर इनकी सीट ज़ाया नहीं हुई तो फ्रीक रोने के पास एक सीट जो है वो अभी भी है, स्टिल है।
0: जी, वो तो है, वो तो है, मगर वो ये है ना कि देखा जाए तो इसके पहलू से ये भी तो है ना कि लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि इसको अब जो इसको 7-8 महीने पे मिली है वो भी इसको वापस करनी चाहिए क्योंकि उसका ये हकदार नहीं था, तो काफी क्या कहते हैं
1: नहीं,
0: डिबेट
1: लेकिन अगर फिर
0: तो
1: ये
0: चलेगी।
1: देखा जाए, ये तो मेरे ख्याल एक लाजियानी सी बात है। एक बंदा इजलास अटेंड कर रहा है तो जब आप मजदूरी अपनी पूरी करते हैं तो आपको मजदूर का आपके घर करेगा तो आप पूरी उसको मजदूरी देते हैं, ये नहीं कहते कि वो जो
0: हाँ
1: आया
0: वो
1: था
0: तो है,
1: कैसे आया
0: वो
1: था
0: तो है,
1: क्यों आया
0: मगर
1: था।
0: वो देखिए ना सब वो पितावही में भी आ रहा है ना तो वो बहुत कुछ आ रहा है, तो अभी तो क्या कहते हैं देखा
1: अच्छा,
0: जाए
1: इसका मतलब
0: तो
1: ये कानूनी जंग खत्म नहीं होगी?
0: यो कानूनी जंग खत्म हो जाएगी क्योंकि ज्यादातर पार्टी ने यही फैसला किया कि अब इसको अब जब इसने फैसला कर
1: डिसीट
0: लिया
1: कर दिया जाएगा।
0: कि हाँ कि ये कोर्ट में नहीं जा रहा तो हम इस केस को अभी तो खत्म करें और
1: ठीक,
0: क्या कहते हैं आगे आगे बड़े जरूरी काम है उन पर फोकस करें, इसकी जरूरत तो नहीं ना क्या कि
1: जरूरत नहीं है।
0: इस
1: चलें,
0: बात
1: ये
0: पे
1: तो बड़ा
0: लड़ते
1: अच्छा
0: रहें
1: किया
0: आपस में।
1: आपने बता दिया अदनान। बाकी बजट की बात है, आप भी कमोर को बजट को देख रहे हैं, आप भी काफी चीजों का हिस्सा रहते हैं, देखते रहते हैं, पता भी चलता रहता है। कोपनहेगन कम्यून का बजट भी जो है तो उसको भी थोड़ी सी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपके पास खबर है तो शेयर करें, क्या मिलने जा रहा है जो है ना लोगों को, आम शहरियों को क्या मिलने जा रहा है, कि यही नहीं है जी हमारा
0: वैसा
1: बजट नहीं पूरा
0: वो
1: होता,
0: तो
1: अब कहाँ
0: देखा
1: से
0: जाए ना
1: इनकम आएगी।
0: वो तो अपने अपने कमून के अंदर जो मान गए हैं वही करती हैं। अभी तक तो कोपेनहेगन कमून ने क्या कहते हैं अपना अपना क्या कहते हैं बजट की है, फुली कर ली है और ये सितंबर के एंड की और फर्स्ट वीक जो अक्टूबर की आएगी उसमें वो अपनी अप्रूवल भी करा लेंगे। बाकी मेरे ख्याल से दूसरे कुछ कमूनों के भी बनते जा रहे हैं, उन्होंने भी अपना बना लिया है, एबिस्लो ने भी नेगोशिएशन चल रही है, तो कमिंग डेज में पता चलेगा। कल इनकी जो मीटिंग होती है मंथली वो मीटिंग भी हुई थी, वहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने डेमोन्स्ट्रेशन भी किए हैं, तो ये चीजें क्या कहते हैं चलती रहेंगी और इसके साथ साथ नेशनल बजट भी जो है वो भी शुरू हुआ हुआ है, तो फिर काफी चीजें क्या कहते हैं चल रही हैं इस वक्त, और कमी देश में पता चलेगा कि क्या बेहतर हुआ क्या नहीं बेहतर हुआ। नहीं राजा साहब, मेरे पास उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यही मुझे पता है कि नमस्ते इंडिया उन्होंने 6 सितंबर वाले दिन अपना प्रोग्राम किया हाउस प्लेस पर टाउन हॉल के सामने, और उसके अंदर इंडियन एम्बेसी उनके साथ थी, और उसमें उन्होंने क्या कहते हैं प्रॉपर्टी अपना पूरा कल्चर बताने की कोशिश की है, और क्या कहते हैं देखा जाए तो ये उनका क्या कहते हैं अपना तरीका था और अपना वेरिया था। होपफुली हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी भी क्या कहते हैं इससे कुछ सीखे और इस तरह के कुछ इवेंट कराने की कोशिश करे कि पाकिस्तान को भी क्या कहते हैं इस प्रेजेंट किया जाए, पाकिस्तान के बारे में भी शो किया जाए। कोशिश तो की गई थी मगर वो इतनी कोऑपरेटिंग स्टाइल से नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हमारे एम्बेसडर को ज़्यादा क्या कहते हैं उस वक्त भी फोर्सेस सेक्शन का ज्यादा शौक था, ये नहीं था पता कि यहाँ पे पाकिस्तानियों को जितना रेस्पेक्ट किया जाएगा और जितना पाकिस्तान को पेश करेंगे उस नतीजे से ही क्या कहते हैं फायदा होगा। और लेट्स होप के फ्यूचर में भी जो एम्बेसडर पाकिस्तान से आए वो इस बात फोकस करे कि हम भी कोई इस तरह का इन्वेंट कर सकें जिसमें अम्बेसी थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करे कि पाकिस्तान की ये क्या कहते हैं व्यूअर और वेयर जो है वो बेहतर किया जाए।
1: बात आपकी बात में वजन है, लेकिन जो हम इवेंट्स वगैरह कराते हैं फेस्टिवल वगैरह कराते हैं बेसिकली ये फंड रेजिंग की तरफ जो है वो चीज़ें चल पड़ती हैं, वो मकासद जो होते हैं कि वो सारे फोत हो जाते हैं। अगर ये फंड रेजिंग में स्टाल ही लगाने हैं तो स्टालों को लाकर जो है वो व्यूअर्स को भी बुलाना है, लोगों को भी बुलाना है, पार्किंग की भी मसाइल होंगे, फिर दिन का मकसद तो ख़त्म हो जाता है।
0: नहीं राजा साहब देखे जिस तरह से इनने टाउन हॉल पे किया है ना, उस तरह से देखा जाए ना तो आप देखें कि पिछले करीबन 10 सालों में कितने इंडियन आ गए हैं, और जब इंडियन कम्युनिटी एक क्या कहते हैं उनकी तादाद ज्यादा हो गई है तो उनने फिर सोचा कि हम अपने कल्चर को भी किसी तरह की कहते हैं रेस्पेक्ट करें। इंशाल्लाह कोशिश की गई थी इस साल पाकिस्तानी एम्बेसी से भी, मगर मुझे नहीं पता कि उसमें क्या क्या इन इंफॉर्मेशन दी है फॉरन मिनिस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा ये पाकिस्तानी अपने कल्चर को रेस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा ही फायदा होगा। जैसे आपको मालूम होगा कि इस वक्त पाकिस्तानी को वीजा लेने की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अभी तक हम कैटेगरी 5 के अंदर ही हैं और कैटेगरी 5 के अंदर से बाहर नहीं निकले, तो इसके लिए हमने
1: तो
0: काम करना है।
1: अदनान,
0: तो फिर
1: यहाँ
0: हम
1: जो फोनिंग्स होती हैं, तंजीमात होती हैं, या ये डेमोक्रेट मुल्क है, यहाँ से तो हकूक के लिए लोग बाहर निकलते हैं, आप भी जाते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं कि लोग जाते हैं पार्लियामेंट के सामने भी अपने हक मांगते हैं, टाउन हॉल के सामने भी जाते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। आप मुझे बताएं कि आप ज़्यादा चूँकि इन चीज़ों में एक्टिव है, पिछले कितने अरसे से आपको अगर कोई याद हो, कोई एक आध मिसाल हो कि गैर मुल्की अपने हकूक के लिए बाहर निकले हैं।
0: यार सब देखें गैर मुल्की निकलते तो है ना, अब देखें परसों चौथे नहीं 2-3 दिन पहले जैसे ये मैंने आपके प्लेटफॉर्म से कहा था कि 5 सितंबर को एक एंटी इस्लामिक डेमोन्स्ट्रेशन बहुत बड़ा हुआ है, इतना बड़ा तो नहीं हुआ मगर उनने पूरी पॉपुलरशिप से करने की कोशिश की है। अल्लाह का शुक्र ये है कि उसके अंदर कुछ टेररिस्ट पार्टियां हैं जिन्होंने इस चीज को कंडेम किया है, क्योंकि वो नाज़िम था और इस तरह की चीजें थी। पाकिस्तानी बाहर निकलते हैं अपने डेमोस्ट्रेशन के लिए भी निकलते हैं, मगर इस वक्त मसाइल ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया मसाइल इतने ज्यादा बन चुके हुए हैं कि जब एक एक बात को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए मगर इंसान को सोच समझ के स्टेटमेंट देनी चाहिए। एक प्रोविंस का स्टेटमेंट देखे और वो डिवाइड होना जो है ना वो उस वक्त खत्म होगा इधर भी और पाकिस्तान में भी जब सब एक टेबल पे बैठेंगे और फेयरनेस एक मुल्क में आएगा। जितनी देर तक ये चीजें नहीं ना होंगी उतनी देर तक हमें मसाइल हमारे मुल्क में भी रहेंगे और यहाँ पे भी रहेंगे।
1: عدنان دیکھے نا مثال کے طور پر، یہ ہم مثال دے رہے ہیں، کسی کی بات نہیں کر رہے، اگر کسی ایونٹ میں اسکریمیں جو 80,000 کی 90,000 کی بک جائیں، اور دوسری طرف آپ نے یہ کہا جی کہ یہ جو اپنا کیٹاگری جو ہے فائیو والا جو ہے یا کون سی کیٹاگری والا معاملہ ہے، ویزوں کا معاملہ ہے، اس معاملے میں اگر لوگ سب مل جل کر اس کے لیے آپ جیسے لوگ جو ہیں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ دیکھیں جی یہ جمہوری ملک ہے، آپ کو حقوق اپنے جمہوری طریقے سے ملیں گے، گھر میں بیٹھ کر یا شغل شغل کر کے میلہ کر کے پاکستانی سیاست کر کے یہاں ڈنمارک میں رہتے ہوئے ڈینش پاسپورٹ جیب میں ڈالتے ہوئے ہمیں سیاست کرتے بھی بہت وقت سوچنا چاہیے، لیکن ڈیفینیٹ جو بندے آئے اپنا پیارا وطن تو ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے، محبت ایک جیسی سب کو ہوتی ہے، اس میں کوئی کسی کو یہ نہ کہے مجھے زیادہ پاکستان سے محبت ہے یا دوسرے کو زیادہ محبت ہے، سب کو محبت ہوتی ہے، لیکن اب جو چوتھی جنریشن جا رہی ہے اس کی بھی محبت بھی اس کے ملک کے ساتھ ہے۔
0: سب دیکھیں کہ دو جگہ پہ دیکھیں، آپ نے جو کیٹیگری 5 کی مسائل دی ہے نا، مجھے پتا ہے کہ اس وقت بڑی کیا کہتے ہیں لوگوں کو، آج میری ایک جگہ ایک بات ہوئی تو اس نے بھی یہی کہا، کہتے دیکھ ہم نے اپنے فوڈ یہ جس کو ہم ابھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ ڈسکوالیفیکیشن میں، کہتے ہم نے فوڈ واپس بیک کر لیا، میں نے کہا دیکھ وہ کچھ مسائل کی وجہ سے، پاکستانی گورنمنٹ کی وجہ سے، ان کا مسئلہ پتا کیا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بیسیکلی فرنٹ پیج سے انہوں نے چیزیں دیکھی ہوں، انہوں نے اندر سے نہ دیکھا ہو کہ کیا ہے، اور میں نے کہا مجھے تو نہیں نہ پتا کہ یہاں کی جو پاکستان کی امبیسی ہے وہ بندے کے بارے میں کون سی انفارمیشن پاکستان بھیجتی ہے، یا وہ بھیجتی بھی ہے کہ نہیں، ان کے اپنے ریسپڈینٹ آتے ہیں، تو یہ یہاں کی جو نئی جنریشن ہیں ان کو پتا ہے کہ مسائل ہیں یہاں پہ، یہاں کی کون سی پرابلمس ہیں اور کون سی چیزیں ہیں۔ آج ایک جیسے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو آج کل زیادہ ہیلسنگ مسجد کے بارے میں بات چال چل رہی تھی، آج پھر یہ سکندر بھائی کی بات چل گئی، پھر کچھ اور باتیں چلتی ہیں، تو یہ مسائلوں کا سب کو پتہ ہوتا ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ مل کے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ نے کسی نکلنے تو پھر آپ کو
1: طریقے سے نکلنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے یہاں کا قانون قاعدہ جو ہوتا ہے جو اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے، میری پسند یا دوسرے کی پسند ناپسند تو نہیں ہو سکتی، یہاں تو جمہوری طریقہ ہے، جتنے لوگ جو آئیں گے ووٹ ڈالیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، جتنے لوگ جو ہے وہ جینون ٹائم اسٹیشن پر آئیں گے اتنا زیادہ ان کی بات سنی جائے گی۔
0: صحیح ہے، یہ آپ کی بات صحیح ہے، آپ دیکھیں نا صاحب کوئی غصہ کرے یا نہ کرے، میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک سال پہلے کہا تھا کہ الیکشن بھی بہت زیادہ اسلام اور مسلمان پہ آئے گا، اور آہستہ آہستہ آپ چیزیں دیکھنا کہ کچھ چیزیں ٹف ہوں گی، آپ کے سامنے ہے کہ کچھ چیزیں تو الیکشن بھی بڑا ٹف آیا تھا، آپ نے ہیلسنگ میں بھی دیکھ لیا کیا ہو گیا ہے، اور چیزوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ 5 ستمبر کو جو ڈیمونسٹریشن ہوا، اللہ کا شکر ہے ڈینمارک کے اندر دو بگ پارٹیاں ونستا اور کنزرویٹو نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے، مگر اس پہ ہم کو بھی فون پیج پہ آنا چاہیے، کچھ لوگ ہمارے آئے ہیں انہوں نے لکھا بھی ہے اور اس کے خلاف بھی لکھا ہے اور کچھ اسٹیٹمنٹ پہ لکھا ہوا ہے، جیسے میں نے فیس بک پہ لکھا تھا، آج ایک بندے نے بڑا اچھا جواب مجھے دیا ہیلسنگ کے معاملے پہ، کہتا ہے بات تو تم نے صحیح کی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کورٹ میں جائے گا، میں نے کہا یہ تو ڈیفینیٹلی کورٹ میں جائے گا، کیونکہ آپ ایک پرمیشن لے کے کہہ رہے ہیں، میں نے کہا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ کلچر ہاؤس ہم بنا رہے ہیں، میں نے کہا آپ نے اجازت دے دینی تھی، انہوں نے کلچر ہاؤس بنا لینا تھا، بس فرق یہ رہنا تھا کہ انہوں نے کلچر ہاؤس بنا لینا تھا، مگر جس جگہ سے آپ بینڈ کر رہے تھے وہ پھر پرابلم تو اس کو کرانی تھی، اب ان نے آپ سے سچ بولا، آپ نے ان سے زیادتی کی ہے تو بات ان نے مسجد کہہ دی تو نہیں بنانا، مسئلہ کوئی ہے نہیں ہے، جس کے ساتھ مسئلہ تھا وہ ایک سپار ہے ادھر کوئی اسٹور ہے، اس نے مسئلہ ڈالا ہوا تھا، وہ بھی اس کی بھی آج سچ کا نہیں نکلا، یہ کہ اس کی پارکنگ کے اندر 4 سے 5 زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ایک ٹائم پہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ پھر اس کو مصیبت کیا تھی اور اس نے اتنا بڑا کیا کہتے ہیں اس طرح کی حرکت کیوں کی ہے، یہ تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔
1: عدنان دیکھیں نا، کسی کی پارکنگ میں گاڑی کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ اتنی ہر بات پہ داؤ لگا کے جو ہے وہ قانون کو بائی پاس کر کے آگے بڑھا جائے، یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے، خود بھی تو کوئی بندے کو ایٹیکیٹس ہونے چاہیے۔
0: دیکھیے راجا صاحب، بندہ دیکھیں کچھ ایک میں سے 20 ہوتے ہیں، जो जो होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एब्सलोन का मुंह में रहता हूँ, यहाँ पे एक मैं उसका टेक्निकली मैं बताता हूँ, उसका मिसाइल करता हूँ। उसकी एक मसला था कि 72% वो क्या कहते हैं गैर मुल्कियों पे जा रहे थे और 38% जा रहे थे गोरों पे। मगर जब हमने देखा ना कि दूसरी जगह जहाँ पे वो मिसाइल के लिए प्रॉब्लम के लिए जहाँ पे वो जा रहे हैं वहां पे हमारे पास जगह नहीं उसके लिए, तो फिर जब हमने एनालाइज किया ना तो वो ये कह रहा था देखिए हम गैर मुल्कियों का केस बहुत जल्दी ले लेते हैं और गोरों का केस हम इतनी जल्दी नहीं लेते। तो मैंने कहा यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गैर मुल्की ने सर किया भी ना कुछ हो तो आप केस उठा लेते हो, आप देखते नहीं हो, तो फिर आपके खर्चे फालतू हो जाते हैं। मैंने कहा ये मतलब नहीं कि एक गैर मुल्की ने चपेट मार दिया कुछ कर दिया तो 20 चपेट मार देंगे। मैंने कहा सर सोच समझ के आप देखा करें कि सामने क्या हो रहा है।
1: एक बंदे की गलती को एक बंदा ही काउंट किया जाए, सबको काउंट ना किया। अदनान आपने देखा डेफिनेट आप बच्चों को सुबह देखते हैं, मैं भी कभी कभी ये देखता हूँ, सर्वे भी करता हूँ, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, उसके बाद जो है वो वालदैन छोड़ने भी आते हैं, उसके बाद फुटबॉल पे भी लोग जाते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में जाते हैं, कॉलेज में भी जो बच्चे जाते हैं, तो आप सुबह देखें कि किस तरह जो है वो ज़ेबरा क्रॉसिंग पे लाइनें लगी होती हैं, किस तरह साइकिलों की लाइनें लगी होती हैं, और कितने बच्चे कितनी तादाद में कॉलेज के बाहर खड़े हों तो बंदा होता है यार इतने लोग आते हैं, स्कूलों के बाहर खड़े होकर देखें तो बंदा कहता है इतने लोग आते हैं, बाने में जाकर देखें तो बंदा होता है यार इतने बच्चे छोटे आते हैं। तो ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए ना कि
0: देखें
1: जनरेशन
0: ये
1: तब्दील
0: एक
1: हो रही है, ये बच्चे क्या
0: सिस्टम
1: सीखें, ये यही कुछ सीखेंगे जो इनका कानून कहता है इनको सिखाता है।
0: जी, ये देखे ना ये डिसिप्लिन है, बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। मैं आपको एक बात बताऊं, फर्स्ट डे था स्कूल का, मैं अपनी कमरे में गया और मैं बच्चों बच्चों को छोड़ने गया, मैं बोर्ड का मेंबर भी था, मेरी जिम्मेदारी भी थी। एक ने गाड़ी गलत खिला दी, कहती है मेरे पास कोई जगह नहीं है। मैंने कहा मतलब तेरे पास जगह नहीं है, तो कहती है टाइम नहीं है। मैंने कहा मुझे एक बात बता, तो मैं नहीं तो पता क्या फर्स्ट डे है, कहती है मुझे पता था। तो मैंने कहा फिर तुम 10 मिनट पहले क्यों नहीं आए, ये मतलब तो ना कि तुम 10 मिनट पहले नहीं आ सकते तो तुम पूरी सड़क ब्लॉक कर दो। मैंने कहा 10 मिनट पहले आ जाती तुम्हें जगह मिल जानी थी, मगर तुम 10 मिनट लेट आइए तो अब तुम ये मतलब तो नहीं ना कि तुम पूरी सड़क बंद कर दो। कहती है नहीं मुझसे गलती होगी। मैंने कहा गलती होगी है मगर अगली बार सोचो, क्योंकि ये जो चीज तुम कह रही हो ये तुम्हारा बच्चा देख के भी ये फॉलो करेगा, उनका
1: अदनान
0: ऐसे
1: देखें
0: करना।
1: लोगों को जो राइट्स हैं वो राइट्स हैं, नई नई दुकानें खुलती हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है, लोगों की लाइनें लगी होती हैं। मेरे नज़दीक ही एक मैं देख रहा था एक चीज़ खुली है बर्गर किंग टाइप इस तरह की बेकसार चीज़ें जो हैं वो ख़ुद जो है वो सोशल मीडिया का खिलाड़ी है, तो तकरीबन 1.5 फरलांग 1.5 फरलांग लाइनें लगी होती हैं। आप मुझे बताएं कि पहले भी उस एरिया में पार्किंग नहीं है तो जो लोग गाड़ियों पे आते हैं वो गाड़ियां कहाँ पार्क करेंगे, जो बिल्डिंगों में रहते हैं वो कहाँ पार्क करेंगे, कुछ पूछने देखने वाला है लेकिन नहीं जी टैक्स आएगा, इनकम होगी टैक्स आएगा।
0: जैसे सब देखिए इन चीजों पे ना सारा काम कर किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला लोगों को भी पता है, क्योंकि ये मसाइल है, यही वन ऑफ द मसाइल कोपेनहेगन में काफी टाइम लगा है। और मैंने उनका बजट नहीं पढ़ा मगर उनने भी बड़ी बहस की है कि इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए और इंशाल्लाह ताला इन चीजों पर
1: इतना
0: काम किया
1: बड़ा
0: जाएगा।
1: बजट है कि अपनी वो फिक्र ही नहीं पड़ी जाती।
0: नहीं, वही है ना जैसे सब।
1: चलें अदनान आप चूंकि इसलिए आपसे मल्टी किस्म के सवाल करते हैं क्योंकि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते आते रहते हैं, बातें भी करते हैं, खुद उसमें शामिल भी होते हैं। अदनान काफ़ी टाइम हो गया, कम्यून के इलेक्शन हो गए हैं लेकिन अभी तक हम जो है वो इधर से उधर बाल, उधर से उधर बाल, कभी इधर कभी उधर, कभी इस तरह की बातें चल रही हैं, कोई ठोस चीज़ बाहर नहीं आ रही, कोई ठोक पॉलिसियां बाहर नहीं आ रही कि ताकि ये काम करें तो अगली दफा इन्होंने वोट नहीं लेने दोबारा।
0: सब वोट सब ने लेने होते हैं मगर मसला ये होता है कि जो पहला साल होता है ना वो बड़ा टफ होता है, क्योंकि काफी चीजें जो होती हैं वो सीखनी होती हैं, टेक ओवर करनी होती है। आप इंशाल्लाह ताला ये जब बजट बन जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ तब्दीली आएगी और कुछ चीजों में भी आएगी। रीजन का मैं ये कह सकता हूँ कि रीजन का जो मसाइल रहा है ना वो ये रहा है कि पूरा जो शेलन है ना उसको एक रीजन में बनाना था, तो वो भी क्या कहते हैं टाइम टेम तिल था, और कुछ रीजन के जो काम थे वो कमूनों में आ गए हैं। इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट कपल ऑफ वीकेंड्स बजट के बाद आपको नज़र भी आना लगेगा कि कुछ तब्दीलें चीज़ें तब्दील हो रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी चीज़ों की सूरत नज़र निकल आएगी कमिंग्स वीक और कमिंग मंथ्स में।
1: अदनान,
0: नेशनल
1: आपका
0: पैन पे
1: बहुत
0: भी
1: शुक्रिया।
0: ऐसे ही है।
1: अदनान, देखिए ना, आज इस वक्त जो है 9:23 हुआ चाहते हैं। जो लोग इस वक्त लाइव सुन रहे हैं उन्हें तो सब चीज़ का पता है, गाड़ियों में या किसी और जगह पे, घरों पे या मुख्तलिफ़ मकामात पर या किसी भी हिस्से, शहर के हिस्से में सुन रहे हैं, उन्हें तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो लोग आगे सीना गजर कुछ सुनाएगा किसी को, तो वो सारी आपकी बातों को जो असल मकसद है वो तब्दील कर देते हैं।
0: सब मेरा काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और मेरा काम है कि लोगों के लिए बेहतरी करना, यही मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया और यही मैं अपने नक्श कदम पर लेके चलूंगा। और अल्लाह की बस मेरी दुआ ये है कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी इस नेक काम में ही गए और आगे उनको अल्लाह ताला अपनी जिंदगी में कामयाबी दे। तो मेरे लिए तो यही है कि मैं जितना हो सकता मैं करता हूँ। अभी आपकी अभी थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा जो है उसको दूसरे कमरे में मैच देख रहा है, उसको थोड़ी बातें करूंगा, फिर उसको वो सो जाएगा, उसके बाद फिर मैं थोड़ी बहुत अपना क्या कहता है एक आधा घंटा ऐसे पढ़ता हूँ, कुछ चीजें देखता हूँ कि कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं ना जो मुझे नेक्स्ट डे। तो इस तरह बंदे का होता है, जैसे आपने शुरू में कहा था कि मेरा इरादा है नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने का, तो वो तो इंसान प्रिपरेशन रखेगा तो वो लड़ सकता है ना, फिर वरना तो बंदा
1: नहीं,
0: पीछे हो
1: एक
0: जाता है।
1: दिन में जो 3 महीने के अंदर आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्हें पता ही नहीं होता हम किस मकसद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो अभी से इरादा करें, उन्होंने 3-4 साल मेहनत करनी है, लोगों से मिलना है, बताना, लोगों को समझ आएगी कि ये लड़का लड़की जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये इनकी तबीयत कैसी है, ये क्या करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे
0: राजा
1: बेहतरीन तरीका आपने अपनाया, पहले भी आप एक्टिव थे, अभी आपने शुरू से ऐलान कर दिया है।
0: साहब अभी तक तो मेरा यही प्लान है कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन लड़ूंगा, बाकी अल्लाह ताला की जो नसीब में होगा वो ही होना है, जो इंसान के नसीब में लिखा होगा वो ही होना है। नसीब और रिस्क जो है वो उसके हाथ में है और ये बंदा नहीं कुछ कर सकता इसके अंदर।
1: अदनान, आपका बहुत शुक्रिया। अदनान, मैं समझता हूँ जितनी मुझे समझ है, जितना तजुर्बा है, जितना हम लोगों से पूछते हैं, आते हैं, बात करते हैं, अदनान देखें कितना प्यारा मुल्क है कि आपको हर चीज़ जमहूरी तरीके से मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हर अच्छी चीज़ हमें मिलती है। कहीं वो होता छोटा मोटा, ज़ाहिर है इतने बड़े लोगों में कुछ ना कुछ तो हो जाता है, घर में जो घर में अफराद रहते हैं उनमें भी तो छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। एक मुल्क चलाना, एक मुल्क में रहना, अस्पतालों की सहूलियात, बाकी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात, बसें, ट्रेनें, क्या क्या मेरा टिकट ज़्यादा है या आपका थोड़ा है, सबके टिकट बराबर है, सहूलियात जो है वो डिफरेंट होती हैं।
0: नहीं दादा साहब यही है और अल्लाह ताला के कहते हैं सब कुछ है, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि
1: बस
0: हमें
1: अदनान,
0: इसमें
1: आप
0: लत
1: लेकर चलें,
0: लग गई।
1: लोगों को साथ लेकर चलें, लोगों को बताएं, हकायक बताएं कि हमारा आने वाला जो वक्त है वो तो वक्त तो अगले पता होता है और होता है, लेकिन अकल भी तो इंसान को, तालीम क्यों हासिल करता है बंदा, वो कहे जी खुद ही आ जाएगा,
0: यही
1: मैं
0: दादा
1: खुद ही कॉलेज में
0: साहब
1: चला जाऊंगा, मैं खुद ही डॉक्टर
0: यही
1: बन
0: दादा
1: जाऊंगा,
0: साहब
1: मेरी किस्मत में
0: मैं
1: लिखा हुआ है। तो ये
0: यही
1: चीज़ें
0: मैं
1: तो
0: कहता
1: अपनी
0: हूँ
1: जगह दुरुस्त है, किस्मत होती है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें खुद भी करनी पड़ती हैं, तब बंदा डॉक्टर बनता है, तब सियासतदान बनता है, जब वोटें पड़ती हैं, जीतता, इलेक्शन जीतता तब बनता है।
0: ऐसा, मैं आपको भी बात बताऊं, इंसान को ना हर अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैं थोड़ी देर पहले आया तो मेरी बेटी कुछ करना चाह रही थी तो मैं डाउट था, फिर मैंने उस चीज़ पर टाइम लिया, मैंने उससे बात की, मैंने कहा ये है, कहती है नहीं बाबा तो तुम देख लो तो बाहर से बदल गया हुआ, मैंने कहा हाँ ये बदल गया हुआ है। तो फिर मेरी तसल्ली हुई, इंसान को हर वक्त अपने आप को तैयारी करनी चाहिए कि इंसान किसी की मदद कर सके, और जो इंसान से हो सकता है वो इंसान को करना चाहिए। तो मैं राजा
1: बहुत
0: साहब
1: शुक्रिया अदनान,
0: इंशाल्लाह
1: आपका,
0: ताला
1: आप भी टाइम की पाबंदी करते हैं, डेविन हमें मजबूरन भी करनी पड़ती है, लेकिन हमारी तबीयत में भी टाइम की जो पाबंदी है वो शामिल है। तो वक्त और लिहाज जो है हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम जब खुद मिसाल बनेंगे, बच्चे भी देखेंगे वो भी पाबंदी करेंगे, दोस्त भी देखेंगे सुनेंगे वो भी पाबंदी करेंगे, लेकिन चूंकि बाज़ जगहों पर बड़ा रिवाज होता है कि 9 बजे अदनान से बात करनी है तो 10 बजे बात करके कहें जी अब बात कर, ये नहीं पता इसकी अदनान की 10 बजे क्या मसरूफियात होंगी, या अदनान सो गया नमाज पढ़ के या अपने काम पे लगा हो, ये हमारी एडिक नहीं होती कि मैंने 9 बजे का टाइम दिया तो मुझे 9 बजे ही बात करनी चाहिए।
0: साहब देखिए, मैंने हमेशा एक चीज़ आ रखी है कि जो टाइम होता है ना उस पर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम पे बंदा करे। अब इंशाल्लाह जरा ये देखिए 9:30 होने वाले हैं, मुझे पता है कि 5-10 मिनट बाद मेरे बच्चे ने सोना है, मैंने उसको क्या कहते हैं तैयार करना है, क्योंकि उसको मैं टाइम से नहीं सुवाऊंगा तो वो टाइम से स्कूल नहीं पहुंचेगा, कौन नहीं स्ट्रेस पहुंचेगा तो वो पढ़ नहीं सकेगा। तो यही तो चीजें होती हैं कि मैं फिर टाइमिंग और ये चीजों को देखना पड़ता है और इंसान को करना पड़ता है।
1: यही तरक्की
0: तो
1: का राज है,
0: ये
1: यही हमें दीन भी सिखाता है, वक्त की कदर करें।
0: यही कुछ हमें सिखाता है। तो राजा साहब, मैं इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बस ये कि आप अपने आप को देखें, बेहतर करें, अपने बच्चों की परवरिश करें, अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, और इससे ही आपकी क्या कहते हैं अपनी हिम्मत आती है।
1: अदनान आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह अब रब्ता रहेगा।
0: ओके ओके अल्लाह हाफिज़।
1: सामान नाज़रीन, ये थे अदनान अली अमीन, जो कि आपको ताज़ा तरीन मालूमात भी दे रहे थे, अपना तजिया भी पेश कर रहे थे। गपशप की शक्ल में सामान हम कोशिश करते हैं, गपशप की शक्ल में प्रोग्राम करें, बड़े बड़े वज़नी सवालात करना या बड़े बड़े वज़नी जवाब लेना, फिर बहुत सारी बातें जो है वो समझने से भी, वो कानों के ऊपर से भी गुजर जाती हैं। तो इंसान को सारी बातें करनी चाहिए, लेकिन एक दोस्ताना माहौल में करनी चाहिए।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए, ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: किसी का परमानेंट ही छीन ले। ये मतलब बहुत सारी ज्यादतियां जो है ना स्वेरिया डावी क्रेडिव ने की हुई है, तो ये इंशाल्लाह ताला जो है ना वो पॉजिटिव होगा। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए क्योंकि इस बार तकरीबन 40% वोट जो है ना यंग जनरेशन के आए हैं, जो कि पिछले 2022 में नहीं आए थे, तो इसका मतलब उससे काफी फर्क पड़ेगा। और तीसरी बात, ये जो काउंसलर के हमारे कम्यून के इलेक्शन है, जो हमारे दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मतलब वो देखें हमारी तादाद बहुत कम है स्वीडन के अंदर, तो उनका अगर वो कम्यून में दोनों नहीं भी बैठेंगे ना, चांस बहुत कम है कि वो कम्यून में बैठ जाए, लेकिन अगर वो उसमें नहीं बैठेंगे तो किसी ना किसी स्थिरीसन में जरूर बैठेंगे, ये 100% है। और जो पाकिस्तानियों की प्रेजेंटेशन है वो इंशाल्लाह जरूर हो जाएगी।
1: शायद आप सुन रहे हैं, आप भी एनालाइज करते रहते हैं, तो यहाँ जिस तरह चूंकि आप डेनमार्क में पैदा हुए, तो डेनिश पीपल्स पार्टी यहाँ भी तगड़ी है, वहाँ भी तगड़ी लग रही है, तो आप किस तरह देख रहे हैं?
2: राजेश साहब, सीधी सी बात है, ये जैसे कैंपेन, मैं चलो थोड़ी हट के बात करूंगा, दोस्तों ने बात की, बड़ी अच्छी बात की, और वो वाकई जिस तरह वो कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। तो इधर मैं थोड़ा स्वेरिया डेमोक्रेट, यानी के स्वीडिश डेमोक्रेट पार्टी का नाम है, जिमी ऑकर्सन उसका, उनकी यही पॉलिसी है कि वो अपनी सियासत जो है फॉरनर्स के ऊपर और खासकर मुसलमानों के ऊपर उनको टारगेट करें। और इसी इलेक्शन कैंपेन में पिछले 1.5-2 माह से उन्होंने राज्य के जो है ना वो टारगेट किया है मुसलमानों को, और जो फॉरनर्स को तो किया ही किया है, लेकिन इस बार उन्होंने वो कहते हैं मुसलमानों के ऊपर एक बड़ा सख्त रवैया और सख्त हाथ रखा है, जिसके ऊपर मैं हैरानकुन तौर पर बड़ा हैरान हुआ हूँ कि यहाँ का जो मीडिया है वो ये चीजें देखने के बावजूद उनको ये नहीं कह सका कि यहाँ पर आप कंपेन करें लेकिन किसी के जो है वो मजरू ना करें, किसी के एहसासात, किसी के जज्बात, क्योंकि यहाँ पर हाली जो मुसलमान और दूसरी जो तबके के लोग हैं जिनका दूसरे रिलीजन से तल्लुक है वो भी रहते हैं, तो आप सिर्फ मुसलमानों को क्यों कर रहे हैं? फिर आपने अगर अपनी सियासत में रिलीजन का कोई यो यो कितने फितना आपने अगर रखना है, तो फिर आप सारे रिलीजन को, क्योंकि वोटर तो फिर आपके सारे हैं, फिर आप मेरा ये मानना है, फिर आप सबको करें टारगेट, सारे रिलीजन को। सियासत का ये मतलब है कि आपने दूसरे क्या कहते हैं मजहब को करना टारगेट। इस चीज की इनको शर्म आनी चाहिए कि जब आप सियासत करते हैं तो अपनी जो आपकी सियासी जो अहलियत है उसको उजागर करें। अगर आप इतने जोगे नहीं हैं तो फिर आप इस तरह की जो बेशर्मी है ये जो लोग करते हैं, खासकर ये जो पार्टी है, इनको ये शर्म आनी चाहिए कि आपके मंशूर में, आपके जो आयन है जो आपके मुल्क का, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी तबके के जो जिसको वो मानते हैं, जो उनका मजहब है उसको आप करें। इस तरह तो इधर कई मजहब हैं जिस यहाँ पर स्वीडन में, तो फिर आपके ये दोहरे मेयार हैं, फिर आप उन सबको करें ना, फिर आपको इतनी है कि क्या दुनिया में हो रहा है, आपको ये भी पता दुनिया में क्या हो रहा है, अगर आप दुनिया को देखना चाहते हैं आप किससे किसके बेनिफिशरी हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, ये तो सबको पता है, कहाँ से आपको पैसा आता है ये भी सबको पता है, कौन आपके पीछे है ये भी सबको पता है, यहाँ पर जो यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं उन सबको पता है इस बात का। और मेरे यही मानना है कि इस बार रिजल्ट इंशाल्लाह ताला पहले से आएगा मुख्तलिफ। जिन लोगों ने नेगेटिविटी करनी है, जिन लोगों ने नेगेटिविटी फैलानी है इधर स्वीडन में, जो ये लोग हैं उन्होंने तो उसके पीछे रहना है, वो तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, उनकी क्या कहते हैं उनके आप जो इंसान की फितरत है वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं हो सकती, उन्होंने उधर ही जाना है। तो मेरा ये मानना है कि इंशाल्लाह ताला बस ये आप उस पॉजिटिविटी के ऊपर होना चाहिए कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जो है एक अच्छी कोई पार्टी आएगी, एक पार्टी जो वो जीतेगी तो उस ज्यादा वोटों के साथ, तो फिर वो किसी दूसरे जो उनका ब्लॉक है उसके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी जिनको ज्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे कि पहले होता है। तो तीसरी बात मैं आखिरी करूंगा, इधर हमें स्वीडन में कुछ काफी साल हो गए हैं, इधर ये पता नहीं एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है कि कोई वाजिया बर्तरी से या कोई अगर पार्टी जीतती है या उसको वाजिया बर्तरी ली देनी नहीं दी जाती, उसको 10-15 بلکہ دوسری جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ بھی مل کے گورنمنٹ بنانی پڑتی ہے، یا اس اس کے وہ اتنے ہو جاتے ہیں بلا کر

0: कुछ कहना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों ने मिस अंडरस्टैंड किया मेरी बात। मैं देखिए, एक कम्युनिकेशन बैरियर है ऑब्वियसली, लेकिन बात जो है वो बहुत सिंपल सी है, जो मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ। और मेरी जो लंबी सी जो बात थी वो ये था कि मैं यही हूँ, ठीक है, इसको और कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी एज अ सोसाइटी कोशिश करें कि ऐसे सिचुएशंस ना बने जहां कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो।
1: नहीं, हम तो मुकाबला कर रहे हैं, हम तो वोट दे रहे हैं, हम तो आपके सपोर्टर हैं।
0: मैं मजबूत हूँ, इसलिए तो क्या मैं, हमने इतना ज्यादा फाइट करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए इंशाल्लाह क्या मैं, हम आप लोगों को सर्व करेंगे शो में, इसमें कोई डाउट नहीं है।
2: लेकिन अशम, जो अशम देखे ना, आजी साहब के पास इंफॉर्मेशन होती है।
0: हाँ, आप मजबूत हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ होंगे। बिल्कुल, जैसे आपने सिकंदर भाई को सपोर्ट किया, आप मुझे भी सपोर्ट करें, क्योंकि हम एक ही बंदे हैं, ठीक है।
3: बस मैं अभी इसके साथ ऐड यही करना चाहूंगा कि अशम ने बिल्कुल, मैं इसलिए बार बार बात कर रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था, देखें हमेशा आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, हमेशा आप लोगों का मुझे प्यार मिला है, सपोर्ट मिली है, ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। अब अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो वही मोहब्बत आप अशम से करेंगे। अब जिस तरह आपने मेरी सपोर्ट किया, इसी तरह आप अशम की सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं अशम की सपोर्ट करूंगा, मैं अशम के साथ खड़ा हूं, मैं अशम को, अगर ये खुदा ना खास कभी जिंदगी में कोई ऐसा सियासत में ऊंच नीच आती है जहां इसको जरूरत होगी, मैं इसका हाथ थामू, मैं इसका हाथ थामूंगा और मैं फिर सकूंगा उठो और बढ़ो आगे। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जो मेरे बहुत ही मोहतरम प्यारे अंकल नदीम साहब, अगर नदीम साहब ने बात की, मैं कहता हूं कि उन्होंने कितनी खूबसूरत तरीके से सारी बात को समेटा है और लपेट के उन्होंने बात की है। और मैं पहले ही कहता था, मैं जब अशम को जानता नहीं ना था, तब भी मुझे पता था कि इनके जो बाप है आगा अशम नदीम साहब, उनका सारा सियासी करियर बताता है, अगर वो नहीं हटे, और इन हम लोग तो किस खेत की मूली है, अंकल आगा नदीम साहब जब अपने मौकफ से नहीं हटे, क्या क्या इनके ऊपर मुसीबतें नहीं आए, जब वो नहीं हटे, तो ये मेरे लिए इससे बड़ी गारंटी है ही नहीं कि अशम की भी रगों में उनका खून दौड़ रहा है। तो मैं भी आप सबसे यही कहूंगा कि आप ये देखें कि अशम ने पॉजिटिव बात की है, और अगर उससे कोई 19-20 का कोई फर्क पड़ गया, उस बात को छोड़ें, मैं अशम के साथ हूं। मैं आप सबसे कहता हूं कि अब आप अशम की सपोर्ट करें, आप अशम के लिए बेहतरी करें, आप अशम के उसका बाजू बने, ताकि वो बेहतरीन तरीके से क्यूबहाउन की असेंबली, कोपनहेगन असेंबली का जो अब ये मेंबर बनेगा, उसमें ये बेहतरीन तरीके से काम करे। मैं अशम के साथ।
2: हाजी साहब, कोई इजाफा करेंगे आप? अशम, आपका बहुत शुक्रिया। आगा साहब, आपका बहुत शुक्रिया।
0: कहना चाह रहा हूँ एंड करने से पहले, और वो ये है कि देखिए अंकल, फ्री रन में बनाने का में मेरा भी बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी एंड बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। सिकंदर भाई से आप यकीन, आप खुद ही पूछे, हम दिन रात पूरा हम धनमक फिर रहे हैं, ठीक है, जो तो जितना सिकंदर भाई का प्रोजेक्ट उतना मेरा भी है। मेरा क्या, ये हमारा मतलब हार्डफुल प्रोजेक्ट, हमारा क्या, मैं मेहनत का फल है ये, तो ऑब्वियसली बंदा को भी अपनी मेहनत का फल छोड़ता नहीं है।
3: अच्छा, मैं भी आपकी बात को, अच्छा मैं भी आपकी बात को कंफर्म करता हूँ। ये जो अशम ने बात की है, ये मैं दोबारा करता हूँ, अशम मेरे साथ पार्टी बनाने से पहले का है, जब हमने पार्टी बनाई है तब साथ था, जब हम पार्लियामेंट के अंदर थे तब साथ था, जब हम पूरा डेनमार्क फिरे हैं तब साथ था, हर मुश्किल टाइम में साथ था, हर अच्छे टाइम में साथ था। ये मेरा भाई है, और इसका जितना मैंने और हम और किसी ने अगर ये पार्टी में हिस्सा डाला है, तो अशम का मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जब मैंने ये पार्टी बनाई है उस पहले दिन से, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अशम के और भी फैमिली के लोग सबसे पहले सीसी के मेंबर थे, और भी इनके थे, ये शुरू से इस पार्टी का हिस्सा है, बड़ा गहरा हिस्सा है, और जितनी मैं इनकी तारीफ करूं वो कम है। और इलेक्शन के दिनों में जो कुछ लोगों ने कोशिश की है हमारे बीच में दरार डालने की, तो मैं ऐलान करता हूं आज कि हमारे दरमियान कोई दरार नहीं है, ना कोई पैदा कर सकता है। अशम छोटा भाई है, अंकल आगा नदीम हमारे बुजुर्ग है, और हम इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं, और इकट्ठे रहेंगे।
2: सिकंदर, लूंबड़ी बहुत तेज होती है,
3: लूंबड़ी जो मर्जी है तेज हो, लूंबड़ी जो है वो कुछ नहीं कर सकती। और हमने
4: लूंबड़ी
3: भी और देखे, अगर इस इलेक्शन में ये हमें अलहदा नहीं कर सके, तो अब इन्होंने क्या करना है।
2: चलें, सिकंदर आपका बहुत शुक्रिया, अशम आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि ये बातें मैंने कहा ना कि सीना गजट

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: आईसीएस एस्फहान का इस वक्त हमें सामना है, टीटीपी का इस वक्त हमें सामना है, बीएलए का हमें इस वक्त सामना है, जो कालेदम की तंजीमें हैं जिनके दहशतगर्द फॉरेन फंडिंग लेके पाकिस्तान के अंदर घुस के हमारा अमन अमान जो है तबाह करना चाहते हैं। थोड़ा गौर कीजिए, वो जब लोग आते हैं दहशतगर्द, पहला उनका काम ये होता है कि उन्होंने यहाँ धमाके करके इनोसेंट लोगों को मारना है, दूसरा उनका टारगेट होता है हमारे वर्दी में मबलूस हमारे नौजवानों को शहीद करना होता है, और तीसरा उनके जहन में ये होता है कि अब हम जा रहे हैं तो हम वहां मर ही जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। तो इस कदर खतरनाक सिचुएशन का हमें सामना है, लेकिन इन खतरनाक तरीन लोगों का सामना कौन कर रहा है? रोजाना की बुनियादों पे 10 15 20 40 50 100 150 लग के लगभग लाशें जो हमें गिरी हुई दिखाई देने को मिलती हैं, सैटेलाइट के जरिए से हमें जो दिखाया जाता है हम देखते हैं, हमारी यही अफवाजें पाकिस्तान तो करदार अदा कर रही हैं। अब इन अफवाजें पाकिस्तान के खिलाफ जो अगर कोई उठ के इनकी तस्दीक करे तो वो नाकाबिले कबूल है, वो कोई भी करे। मेरा तलक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है कर्नल साहब, मैं 10 साल मीडिया सेक्रेटरी रहा हूँ बर्तानिया का, पीएमएलएन का, मैं इस्तेकाम में पाकिस्तान ओवरसीज का इस वक्त बर्तानिया का मैं चेयरमैन हूँ, मैं हर वक्त पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के कद काट के लिए, उनके इज्जत और एहतराम के लिए, अर्ज वतन के जो पॉजिटिव एक जेस्चर के लिए और हमारे सरदार अली परचम की जो है बुलंदी के सरबुलंदी के लिए मैं हमेशा कारबंद रहता हूं। मुझे कोई परवाह नहीं है कि कोई दूसरा क्या कहता है। अगर हमारे मुल्क के अंदर कुछ लोग अगर वो हमारी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बातें करते हैं तो इसमें असल में हमारा अपना कसूर है कि हम पिछले 80 सालों के लगभग सालों में हम अपने नौजवान नस्ल की नेशन बिल्डिंग नहीं कर सके। अब इसमें कसूर आप मुझे कसूरवार मुझे करार दे दीजिए, कसूरवार मेरे वालदे मोहतरम को दे दीजिए, कसूरवार मेरे अबाओ अजदाद को दे दीजिए, जो जिनको कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बना के थमा दिया कि ये हम बड़ी मुश्किल से कश्ती को निकाल के लेके आए हैं, अब तुमको इसको संभालना है। कसूरवार जिसको मर्जी आप करार दे दीजिए, लेकिन अभी भी अगर वक्त आप थाम लें, वक्त की उसकी लगाम को थाम लें, आज भी अपने नौजवान नस्ल को जो कि 60% से ज्यादा है, जिसने आने वाले वक्त में हमारे पाकिस्तान को संभालना है, कोई जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कोई फौज पाकिस्तान एयरफोर्स का बड़ा जरी किस्म का एक मुजाहिद बनेगा, इसी नौजवान नस्ल के अंदर हमारी मुल्क कौम की जो आगे जो है मुस्तकबिल संभालने वाले लोगों ने निकलना है। इस 60% आबादी को, नौजवान नस्ल लड़कों लड़कियों का, कि नेशन बिल्डिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, तो मेरा ये बड़ा अदब से गुजारिश है हुक्मरानों से भी, सियासतदानों से भी, अफवाज पाकिस्तान से भी, जो पिछले जो गुजर गए वक्त जो जो गलतियां कोताहियां हुई उन गलतियों कोताहियों को सीख के ये अहद किया जाए कि हम मजीद ये वाली गलती और ये कोताही नहीं करेंगे, इस जमीन के लिए, इस सरजमीन के लिए हम हर मुमकिन अपना किरदार अदा करेंगे। मैं यहाँ रुकता हूँ, दूसरे दोस्तों को साथियों को मौका दीजिए, मैं दोबारा अगर मुझे मौका देंगे तो मैं कुछ और बातें करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया शाकर साहब। हम चलते हैं चौधरी शौकत साहब यहाँ, जो डेनमार्क के मशहूर बिजनेसमैन हैं और काफ मुस्लिम लीग के बानी, काफ के जो बानी रहनुमा हैं। चौधरी शौकत साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, आपका, आपकी पूरी टीम का, और आप सुनने वाले जो सामईन है मेरे साथ हैं उनकी खिदमत में अस्सलाम
1: वालेकुम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा।
2: जी राय साहब आपको और मेरे सब साथी जो मेरे साथ है उनकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: जी आवाज आई है आप?
1: जी यार, ये जो साहब हम बात कर रहे हैं 6 सितंबर के हवाले से बात कर रहे हैं, आप बिजनेस भी करते हैं, आप काफली के रहनुमा हैं, आप 28-20 साल सदर भी रहे डेनमार्क के, तो आप क्या कहेंगे 6 सितंबर के हवाले से?
2: जी राय साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज के दिन के हवाले से यही है कि जो हमारे शुहदा हैं, जो हमारे पाकिस्तान में कुर्बानियां दे चुके हैं या कुर्बानियां दे रहे हैं, हम उनकी खिदमत में खराज तहसीन पेश करते हैं। सिर्फ उन्हीं का नहीं है, उनके खानदान को, उन माओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने उन बच्चों को इतना परवान चढ़ा के और पाकिस्तान में कुर्बान होने के लिए, पाकिस्तान पे कुर्बान होने के लिए, पाकिस्तान की अवाम की जो है को महफूज करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की और जानें कुर्बान कर रहे हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ یہ ایسی مائیں ہیں جو ہماری پاکستان کی ایسی حوصلے حوصلہ بلند ان کے حوصلے ہوتے ہیں, جو اپنے بچوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں نے

0: उसको सीट मिल जाएगी, और फिर क्या कहते हैं वो पी कॉइन पर चीख को अस्पिछया करेगा जो अगले 3 साल होंगे ना नेक्स्ट इलेक्शन तक, यही इसका नतीजा आ रहा है। और जो सिकंदर भाई हैं वो फिर अब पार्टी के अंदर अपनी को बिल्डअप करेंगे, और डेफिनेटली पार्लियामेंट के इलेक्शन, रीजन के इलेक्शन, कमून के इलेक्शन, उसकी तैयारी और उसकी प्रिपरेशन में करेंगे, और यही कर सकते हैं वो, और आशम और अपनी पार्टी को सपोर्ट कर
1: इसका
0: सकते हैं
1: मतलब उनके पास
0: जब।
1: खुला टाइम होगा, आने वाले इलेक्शन को फोकस करेंगे।
0: मेरे ख्याल से तो यही करेंगे, और इस चीज को क्या कहते हैं देखेंगे, बाकी अपनी उनकी अपनी राय है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ये तो अब उनकी लीगलिटी और वो सोचेंगे। मगर ये खबर तो यही है कि उनने अपनी फैसला यही किया कि वो कोर्ट में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो बहुत बहुत सारा टाइम लगेगा, और हो सकता है वो अगले इलेक्शन तक क्या कहते हैं हम फैसला ना आए तो
1: तो फिर ये तो
0: फिर उसका कोई
1: फ्रीक
0: फायदा
1: रोने
0: तो।
1: को, ये ठीक है, ये अखबारी अखबारात में या कानूनी पेचीदगियाँ जो वो तो साथ साथ चलती रहती हैं, चलती भी रहेंगी आने वाले वक्तों में भी, लेकिन अगर इनकी सीट ज़ाया नहीं हुई तो फ्रीक रोने के पास एक सीट जो है वो अभी भी है, स्टिल है।
0: जी, वो तो है, वो तो है, मगर वो ये है ना कि देखा जाए तो इसके पहलू से ये भी तो है ना कि लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि इसको अब जो इसको 7-8 महीने पे मिली है वो भी इसको वापस करनी चाहिए, क्योंकि उसका यह हकदार नहीं था, तो काफी क्या कहते हैं द
1: नहीं,
0: बैक
1: लेकिन अगर फिर
0: टू
1: ये देखा
0: चलेगी।
1: जाए, ये तो मेरे ख्याल एक लाजानी सी बात है, एक बंदा इजलास अटेंड कर रहा है तो जब आप मजदूरी अपनी पूरी करते हैं तो आपको मजदूर का आपके घर करेगा तो आप पूरी उसको मजदूरी देते हैं, ये नहीं कहते कि वो जो
0: हाँ
1: आया
0: वो
1: था
0: तो है,
1: कैसे आया
0: वो
1: था
0: तो है,
1: क्यों आया
0: मगर
1: था।
0: वो देखिए ना सब वो पितावही में भी आ रहा है ना, तो वो बहुत कुछ आ रहा है, तब भी तो क्या कहते हैं देखा
1: अच्छा,
0: जाए
1: इसका मतलब
0: तो
1: ये कानूनी जंग खत्म नहीं होगी।
0: जो कानूनी जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर पार्टी ने ही फैसला किया है कि अब इसको, अब जब इसने फैसला कर
1: डिसीट
0: लिया
1: कर
0: है
1: दिया जाएगा।
0: कि हाँ कि ये कोर्ट में नहीं जा रहा तो हम इस केस को अभी तो खत्म करें और
1: ठीक,
0: क्या कहते हैं आगे आगे बड़े जरूरी काम है उन पर फोकस करें, इसकी जरूरत तो नहीं ना कि अब
1: जरूरत नहीं है।
0: ये इस
1: चलें,
0: बात
1: ये
0: पे
1: तो बड़ा
0: लड़ते
1: अच्छा
0: रहें
1: किया
0: कुछ
1: आपने
0: दिन।
1: बता दिया अदनान। बाकी बजट की बात है, आप भी कमोर को बजट को देख रहे हैं, आप भी काफी चीजों का हिस्सा रहते हैं, देखते रहते हैं, पता भी चलता रहता है। कोपनहेगन कम्यून का बजट भी जो है तो उसको भी थोड़ी सी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपके पास खबर है तो शेयर करें, क्या मिलने जा रहा है जो है ना लोगों को, आम शहरियों को क्या मिलने जा रहा है, कि यही नहीं है जी हमारा
0: वैसा
1: बजट भी पूरा होता
0: वो
1: अब
0: तो
1: कहाँ
0: देखा
1: से
0: जाए ना,
1: इनकम आएगी।
0: वो तो अपने अपने कमून के अंदर जो मानगा है वो ही करती हैं, अभी तक तो कोपेनहेगन कमून ने क्या कहते हैं अपना अपना क्या कहते हैं बजट की फुली कर ली है, और ये सितंबर के एंड के और फर्स्ट वीक जो अक्टूबर की आएगी उसमें वो अपनी अप्रूवल भी करा लेंगे। बाकी मेरे ख्याल से दूसरे कुछ कमूनों के भी बनते जा रहे हैं, उन्होंने भी अपना बना लिया है, एब्सलो ने भी नेगोशिएशन चल रही है, तो कमिंग डेज में पता चलेगा। कल इनकी जो मीटिंग होती है मंथली, वो मीटिंग भी हुई थी, वहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने डेमोन्स्ट्रेशन भी किए हैं, तो ये चीजें क्या कहते हैं चलती रहेंगी। और इसके साथ साथ नेशनल बजट भी जो है वो भी शुरू हुआ हुआ है, तो फिर काफी चीजें क्या कहते हैं चल रही हैं इस वक्त, और कमिंग डेज में पता चलेगा क्या बेहतर हुआ क्या नहीं बेहतर हुआ। नहीं राजा साहब मेरे पास उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यही मुझे पता है कि नमस्ते इंडिया उन्होंने 6 सितंबर वाले दिन अपना प्रोग्राम किया हाउस प्लेस पे टाउन हॉल के सामने, और उसके अंदर इंडियन एम्बेसी उनके साथ थी, और उसमें उन्होंने क्या कहते हैं प्रॉपर्टी अपना पूरा कल्चर बताने की कोशिश की है, और क्या कहते हैं देखा जाए तो ये उनका क्या कहते हैं अपना तरीका था और अपना वेरिया था। होपफुली हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी भी क्या कहते हैं इससे कुछ सीखे और इस तरह के कुछ इन्वेंट कराने की कोशिश करे कि पाकिस्तान को भी क्या कहते हैं इस प्रेजेंट किया जाए, पाकिस्तान के बारे में भी शो किया जाए। कोशिश तो की गई थी मगर वो

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: इस वक्त हमारे साथ हाजी असलम मेहर साहब, सैयद तुकीर हसन बुखारी शाह साहब, चौधरी शौकत साहब जो मशहूर बिजनेसमैन है डेनमार्क के, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज के हालात पर बात करेंगे, इनसे बात करेंगे कि आज चूंकि लोगों के पास दोहरी शहरियत है, स्वीडन की भी और डेनमार्क की भी, और डेनमार्क के जो स्वीडन में इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे और मौजूदा हालात पर भी बात करेंगे। चौधरी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, हाजी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, शाह साहब आप तो खुद प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं।
2: शुक्रिया जी साहब का, बहुत शुक्रिया राय साहब।
1: चौधरी साहब सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, चूंकि आपको टाइम जो है हमेशा कम मिलता है। हाजी साहब आपको तो आप अपना है, आपको भी टाइम मिलता है, शाह साहब भी तो प्रोग्राम करते हैं। जो सब इलेक्शन होने जा रहे हैं, इससे पहले आपने अगर सिकंदर का प्रोग्राम सुना, अशम का सुना कि अशम जो है वो फ्री ग्रोने का, इंडिपेंडेंट ग्रीन का सिटी काउंसलर बनने जा रहा है, सिकंदर भी बहुत खुश है, अशम आगा भी बहुत खुश है, आप क्या कहेंगे?
2: जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, राय साहब आपको और मेरे सुनने वाले सामीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथी हैं असलम मेहर साहब और तुकीर शाह साहब जो है उनको भी अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने कहा मैं पहले तो नहीं रेडियो सुन सका क्योंकि मैं काम पे था, तो अभी राय साहब बात यह है कि जैसे आपने कहा कि सिकंदर का और जो है ना आगा का, जो उसके बाद ये जो उनकी पार्टी का है, तो मैं समझता हूँ कि ये सिकंदर का सारा सेरा ही है। अगर अगर सिकंदर डी सीट हुआ है तो उसका ही वो दूसरा मेंबर है जो कि वो सामने आ गया है और उसी ने ही काम करना है, बैक में सिकंदर ही है। सिकंदर के अगर सिकंदर ना चाहता तो वो इस तरह से पार्टी का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता था, बन भी नहीं सकता था। तो ये तो सारा अपने दोनों का आप एक दूसरे के साथ इत्फाक की बात है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को साथ लेके चलने वाली बात कर रहे हैं और करना भी चाहिए, ऐसे ही होता है। जो पार्टी में जिसको भी जरा मंडेट का हक मिलता है वो उसके साथ तामन करता है। तो मैं समझता हूँ सिकंदर का एक बड़ा जो कि वो भी उसके साथ सही तरीके से वो काम कर रहा है और उसको मशवरा दे रहा है, सलाह भी कर रहा है उसके साथ, वो भी उसके साथ, आगा हाशिम भी उसके साथ जो है ना सलाह मशवरे के साथ एक दूसरे के साथ वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मफाद में जो भी बातें होगी मेरे ख्याल में वही पार्लियामेंट में वो भी करेंगे और हमारे हकूक के लिए जो भी हो सका उनके आगा हाशिम से वो इंशाल्लाह हमारे लिए वो करेगा, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे बुजुर्गों के मुस्तकबिल के लिए। वो यंग लड़का है और उसकी सोच भी अच्छी है माशाल्लाह, अच्छा एक दूसरे के साथ मिलता भी है, एक दूसरे से बड़े अच्छे इखलाक से प्यार से, और दूसरा उसके साथ वो पार्टी के साथ भी लायल है, वो काम करना चाहता है पार्टी में रह के। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा जो है ना मेरे ख्याल में वो भी रिजल्ट देगा।
1: जी हाजी साहब आपने बात सुनी चौधरी शौकत साहब की, जो डेनमार्क के सीनियर सियासतदान भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और जो बिजनेसमैन भी हैं, हाजी साहब आप क्या इजाफा करेंगे?
3: जी शौकत साहब की सब

0: आज भी मैं जाती हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं इलेक्शन लड़ने का, लेकिन मैं बड़े जाती हूँ उन दुकानों पे, उनसे बातचीत करती हूँ, उनको कोई छोटा मोटा काम होता है कर देती हूँ। तो लेकिन वो जो जिस तरीके ने इन्होंने मुझे, मेरे दिमाग को, मुझे नहीं फिजिकली, मेरे दिमाग को एक एक जिस तरह आइसोलेशन में, हिफ्ज़े बिजा में नहीं रखते कि इससे बात नहीं करनी, इससे ये नहीं करना, इससे वो नहीं करना, उस चीज ने मुझे फौलाद का बना दिया। मैं सिर्फ अपने काम का सोचती हूँ, आई डोंट केयर वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं सिर्फ अपने अमल की जिम्मेदार हूँ। और ऐसे मुसलमान हमारे मुनकर नकीर बैठे हुए हैं दोनों कंधों पे, तो हमें यही करना चाहिए। तो मैं इस चीज की परवाह नहीं करती कि पार्टी से निकाल देंगे या नहीं कर देंगे। और हमेशा याद करें, याद रखें कि जिस चीज से आप डरते हैं, जिस चीज से आप डरते हैं, आपके दुश्मन को पता चल जाता है और वो उसको यूज करता है। मैं तो नहीं डरती ना, उस वक्त के बाद मैं कभी भी नहीं डरी, कभी भी नहीं। उस वक्त मे भी इलेक्शन के दिन थे, लेकिन मेरे SF से लेकर सोशल डेमोक्रेट में जब भी बयान आते थे, तो मैं मतलब पूरे, जिसको पंजाबी में कहते हैं तड़ले से, वो बोलती थी। मुझे कुदरती तौर पे मेरे वालिद साहब ने मुझे बनाया इस किस्म का, मेरी तरबियत इस किस्म की हुई है कि आप किसी से बदतमीजी ना करें, लेकिन अपना मुद्दा जरूर बयान करें, क्योंकि आप अपना मुद्दा बयान करते हैं, मैं अपना करती हूँ, उससे तीसरी खूबसूरत चीज निकलेगी। ये कोई बात नहीं कि आप हर वक्त ये कि मैं आपको बताऊं, तो शरारतन मैं कभी कह देती हूँ किसी महफिल में ना, कोई शख्स बार बार के मैं आपको बताऊं, तो बड़े शरारतन मैं कह देती हूँ, भाई मैंने तो नहीं आपसे पूछा, आप क्यों बताएंगे, जब पूछूंगी तो बता देना। हम ठोसते हैं अपनी क्या उसको राय एक दूसरे पे ना, ये गलत बात है।
1: लुबना, ये
0: आप
1: कितने
0: अच्छे,
1: दिनों की हुकूमत बाकी है?
0: मुझे देखें, अब बजट होना है, अब देखें क्या होता है। पहली तो इनकी लड़ाई हो गई है ना, तो अगर इसी तरह अपनी अपनी, जैसे SF के जो लोग हैं, जो इनिस लिस्ट के लोग हैं, वो अपने अपनी पार्टियों को जरा हैंड्स अप करें ना, कि ये इलेक्शन के दिनों में, सॉरी, ये जो डेन स्टेट्स वो डेनिश नेशनैलिटी की बात है, तो ये तो इनका पहला बजट है ना। मेरा ख्याल है अगला बजट तक निकाल लें तो बड़ी बात है, मेरी तो
1: तो
0: उम्मीद है
1: क्या
0: कि उससे
1: समझी
0: पहले
1: है
0: भी
1: कि
0: उसकी
1: सोशल
0: सीट।
1: डेमोक्रेट में भी इस तरह की जो ग्रुपबंदी होगी है, इस पर भी इख्तलाफात हैं वज़ीर आज़म के साथ?
0: बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक पुराना ग्रुप है जो, जिसमें पॉल न्यूगोप, यूटे हिल्डन, मुझे तो अब याद भी नहीं कि क्या नाम था उसका,
1: मोन
0: बियर
1: जुपिटर,
0: वाइस, मोन्स लुकेट्स, वो मौजूद है, वो मौजूद है, लेकिन उनकी अकलियत है, इतने ज्यादा वो लोग नहीं है, बट दे आर देयर। और वो बिल्कुल मेटर फर्गसन को नहीं पसंद करते, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, जो भी नया आता है वो अपनी कुर्सी के लिए, सारे बंदों के
1: तो
0: पास
1: पार्टी
0: एक
1: फॉर
0: कुछ,
1: मैन बहुत तगड़ा होता है, बहुत पावर होती है उसके पास।
0: लेकिन ये लोगों को अपने साथ मिला लेती है। इसके जैसे इसको अभी पिछले दिनों एक स्कैंडल था कि इसने अपने भाई को कहीं जॉब लेके दी है, इसने फलाने को लेके जॉब दी है, इसके इतने स्कैंडल है आज तक। यानी डेनमार्क में जो असूल है, जो तरीकाकार है, कि जब किसी का क्या कहते हैं, एक वो था तामल केस था, कंसर्वेटिव का एक था, मुझे अब इस वक्त उसमें नाम नहीं आ रहा, उसने खड़े खड़े
1: फॉल
0: इस्तीफा दे
1: श्लूटा,
0: दिया था,
1: जिस पर रिजाइन देकर
0: पॉल
1: गए
0: श्लूटा,
1: थे।
0: यस यस, पॉल श्लूटा, ये पहला जो है सोशल डेमोक्रेट का चेयरमैन है जिसके स्कैंडल जो भी आते हैं, इसका हाजमा इतना स्ट्रांग है, उसको निगल जाती है, कुछ कुछ भी नहीं होता। ये जब गई थी कोरोना के दौरान इसराइल में मीटिंग करने, किसी को नहीं पता था, फिर इसने वो जो मिंक्स होते हैं उसका फॉर्म दिलवा दिया, फिर पता नहीं क्या क्या, यानी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ये
1: लुबना,
0: पाकिस्तान तो नहीं
1: चलें
0: चल
1: सियासी तौर पर देखा जाए तो अगर सियासी पार्टी, आपने तो पार्टी के मंशूर का कह दिया कि आपकी पार्टी के मंशूर में लिखा हुआ है, क्या बाकियों की पार्टी के मंशूर में भी लिखा हुआ है? ये अपने मंशूर पर अमल नहीं करते ये सारी सियासी जमातें?
0: देखे, पार्टी का मंशूर एक आपकी गाइडलाइन होती है। असल कुव्वत जो है पार्टी के, जो छोटे छोटे हलके होते हैं, वो अपनी तजावीज जो इनकी सालाना मीटिंग होती है वहां पे पेश करते हैं, और फिर जो वहां पे मंजूर होता है या मैनोफेस्टो से निकाला जाता है या डाला जाता है। तो मैं इसलिए नहीं कि मैं बजी दूं कि नहीं यही करो यही करो, यही एक रास्ता है अपनी बातें इम्प्लीमेंट करवाने की, अपनी बातें मनवाने की। आप बाहर गोल्स प्लेस पे खड़े हो जाएं, कोई फर्क नहीं, आप अपने जो साथी हैं उनसे लड़े, लेकिन एक जो पार्टी के अंदर जमहूरी तरीके हैं कि पार्टी के हलके के जरिए आपने अपनी बात मनवानी है। एक वक्त था कि یہاں پہ خاتون تھی استبروسک کونسلر تھی ریڈیکل ویشٹا کی, تو وہ ریڈیکل ویشٹا کی انٹرنیشنل کمیٹی میں کام کرتی تھی, وہ اور کچھ دوسرے

0: तो जाहिर बात है वो आग लगी है, प्रेशर बिल्ड, पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड हुआ है, तो फिर यही जो पार्टीज हैं, यही मिनिस्ट्रियों में बैठी हैं और यही जो लोग होते हैं,
1: नहीं,
0: फिर
1: आग
0: यही
1: तो
0: आग,
1: बहुत जगह लगी है।
0: आग तो बहुत जगह लगी है। और जाहिर बात है ऐसे काम में हमेशा मीर जाफर, मीर सादत का भी किरदार कहीं ना कहीं होता है, और वो भी है और हमें पता है। लेकिन राजा साहब बात बहुत सिंपल है, ये इतनी फजूल बात पे अनसीट कर रहे हैं, डीसीट कर रहे हैं। एक तो होता है मैंने कोई क्राइम किया होता है, एक तो होता है मैंने की जो स्टाफ लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, उसकी मैंने खिलाफवर्जी की होती, मैं पकड़ा जाता किसी पैसे खाने में, मैं पकड़ा जाता किसी के कोई क्रिमिनल लॉ तोड़ने में, तो फिर बनता है कि भाई इसको डीसीट किया जाए। ये तो उन्होंने एक फजूल टेक्निकलिटी पकड़ ली है कि नहीं भाई आपका ये फर्स्ट होम नहीं है, ये आपका सेकंड होम नहीं। अच्छा कानून इस चीज की भी इजाजत देता है कि अगर आपके दो तीन होम है तो फिर आपको अपनी मर्जी आप कहाँ पे रजिस्टर होना चाहते हैं। ये शिक भी उन्होंने हमें इस्तेमाल नहीं करने दी, कहते हैं नहीं आपका फर्स्ट होम हयालियों में है, इसलिए जो है आपका फर्स्ट होम यहाँ पे नहीं है, तो आप जो टेक्निकली जो है फिर आप यहाँ के मेंबर नहीं रह सकते। यानी कि इतनी फजूल बात है करने वाली, और हमने अपनी सीट निकाली है, मैंने इतना सारा वोट लिया है, लेकिन मैं अपने वोटर से, अपने सपोर्टर से यही कहूंगा कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इलामा इकबाल का शेर है ना कि वो तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये हो रहा ही हमारे साथ, इसलिए हम हक बोलते हैं। आप हक नहीं बोलेंगे तो फिर आपके साथ ये चीजें नहीं होंगी, इसलिए मैं समझता हूँ ये भी हमारे लिए, हमारा लिए एजाज है, और हम इंशाल्लाह ताला दोबारा इससे ज्यादा स्ट्रांग आएंगे।
1: आप मुझे बताएं कि आप दोबारा सिटी काउंसिल में आने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे?
0: अब आपका मतलब है अपील, अपील के हवाले से?
1: नहीं, अपील नहीं, वैसे आपका दोबारा आने की कोशिश करेंगे?
0: नहीं, मैं क्या कहते हैं जो इस वक्त मेरा प्लान है वो ये है कि हम कोपनहेगन में, मैं अब दोबारा जो सिटी काउंसिल है उसका इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और मैं पार्टी को फिलहाल, मेरे यही सोचा है कि मैं पार्टी को ये कहूंगा कि कोपनहेगन की असेंबली के लिए, जो काउंसिल के लिए जो इलेक्शन है, उसको अगली बार जो है उसमें जो लिस्ट बनेगी उसमें असम जो है वो इसमें स्पेस कैंडिडेट हो, और मैं कोपनहेगन से जो है जो कौमी असेंबली का इलेक्शन है वो लड़ूंगा। और मैं इस वक्त जो है ये बिल्कुल वाजे अल्फाजों में कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन जो था ये हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि हम पार्लियामेंट में नहीं थे, और मेरे लिए लड़ना जरूरी था ताकि हम सीट निकालते। ये सच्ची बात है, अगर मैं ये इलेक्शन ना लड़ता तो हमारी पार्टी की सीट नहीं निकलनी थी, तो ये निकली है सीट, तो हमारे पास सीट
1: लेकिन
0: आई है।
1: सिकंदर, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पार्टी के लिए साइन इकट्ठे नहीं कर रहे हैं?
0: करने हैं जी, बिल्कुल करने हैं। और अब देखें ना टाइम ही टाइम है, अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब ऐसे ही होता है ना, जो पार्टी लीडर है, देखें जितनी भी और पार्टीज हैं उसमें भी होते हैं
1: लेकिन ये
0: मेंबर हंसते
1: लीडरशिप
0: हैं।
1: आपके पास ही रहेगी फॉर बेनी?
0: जी, फ्री कौन है, इंडिपेंडेंट ग्रीन पार्टी का लीडर जो है, चेयरपर्सन जो है वो मैं ही रहूंगा, और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी बकाया सीसी के साथ, अपने होप स्टूडेंट्स के साथ, असम के साथ, जितने भी हमारे बकाया मेंबर हैं उनके साथ हम अब अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देंगे। बहरहाल मैं आपके सवाल के हवाले से ये कहूंगा कि मैं अब अगली बार कोपनहेगन में इलेक्शन सिटी काउंसलर का नहीं लड़ूंगा, उसमें मेरा दिल ये है कि ये जो है ये असम जो है अगली बार यहाँ पे लड़े, और हम इंशाल्लाह जो असेंबली का इलेक्शन है, कौमी असेंबली का, उसके लिए हम अब तैयारी करेंगे इंशाल्लाह।
1: चलें, ये तो आपकी पार्टी ने फैसला करना है, आपने राय दी, आपकी राय का डेफिनेट पार्टी एहतराम करती है। सिकंदर, छोटे छोटे सवाल हैं, अवाम के लिए आपका इस वक्त क्या पैगाम है?
0: मेरा पैगाम यही है कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और हमने कोई क्राइम नहीं किया, हमने कोई गैंग रिलेटेड क्राइम नहीं किए, हमने कोई क्रिमिनल लॉ नहीं तोड़ा, हमने कोई क्रिमिनल लॉ की कोई शिक जो है उसको हमने पामाल नहीं किया। ये टोटली एक सीपीआर जो लॉ होती है, सीपीआर लॉ होती है, ये उसकी शिक है, इसमें कोई क्राइम नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग ये डर रहे हैं कि पता नहीं अब सिकंदर दोबारा सियासत में आ सकता है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैंने ये सीट छोड़ी है, मैंने सियासत नहीं छोड़ी, हम इंशाल्लाह ताला इससे भी स्ट्रांग दोबारा आएंगे, और आप देख रहे हैं कि हमारी जो वेल फोपोन है वो भी सारे यही कह रहे हैं कि हम साथ हैं इनके, पहले भी साथ थे, आज भी सिकंदर के साथ हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से जो है हम ये क्या इसे कहते हैं, इसको सिलसिले को आगे चलाएंगे। مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ہماری سیٹ برقرار رہے گی۔
1: چلیں اپنا سکندر، آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے بار بار اشم کا ذکر کیا، تو اشم سے ہم نے رابطہ قائم کیا، تو اشم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اشم آپ کو ادھر آپ کی آواز پر

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

यही वजह कि आपको एक चीज का इदराक होना चाहिए कि गुज़िश्ता 80 साल से हमारा असली दुश्मन, वो कई बार हमारी कुव्वत को, हमारे जज्बे को, हमारे ईमान को आजमा चुका है, लेकिन आज तक वो हमें ना तोड़ सका है और ना ही हमें कमजोर कर सका है उस तरीके से कि वो उसका रोब या दबदबा हम पे जो वो कायम हो सके। यही वजह है कि ये पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी है, पाकिस्तान के एक प्रोफेशनल बैटल हार्डन आर्मी भी है। दूसरी जो साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि गुज़िश्ता 20 साल से हम वार अगेंस्ट टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। जो 20 साल से मुराद ये है कि इस 20 साल के अरसे में जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से कोई एक अफसर एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट आया, उसने कैंट की लाइफ नहीं देखी, उसने बैटल फील्ड की लाइफ देखी है और अब वो कर्नल और ब्रिगेडियर के ओहदे पे पहुंच गया है। और इसी तरीके से हमारे जवानों ने जो सेंटर से, ट्रेनिंग सेंटर से यूनिट में आया है, वो कभी सियाचिन पे है, कभी नॉर्थ वजीरिस्तान में, कभी साउथ वजीरिस्तान में, कभी बलूचिस्तान के रेगजारों में और पहाड़ों में वो दहशत गर्दों के खिलाफ नमर्द आजमा है। तो लिहाजा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुसलसल गुज़िश्ता 20 साल से जंग में अपने जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं, अपने वतन की खिदमत और वतन की हिफाजत के लिए जो है अमा वक्त जो है तैयार हैं और दुश्मनों की जो चालों को नकाम बार कर रहे हैं और इस तरीके दहशत गर्दों का कला कमा कर रहे हैं, तो उसकी प्रिपेयरनेस का तो आपको अंदाजा होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि जी TTP ने बहुत कुछ पाकिस्तान के अंदर नुकसान किया, बेशक गुज़िश्ता 2003 से लेके आज तक तकरीबन 90,000 हमारे जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो शहीद हुए हैं। बहुत से बड़ा $150 बिलियन जो डॉलर है वो हमारा वॉर ऑन टेररिस्ट में नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान का बहुत बड़ा विजय जो सूबा है जिसकी आबादी तो शायद 1.5 करोड़ के करीब है, लेकिन 44% इन साइज ऑफ लैंड मास ऑफ पाकिस्तान टोटल जो हमारा रकबा है उसका, तो वहां पे गुज़िश्ता कई सालों से इंसर्जेंसी और टेररिज्म के अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी जंग लड़ रही है और वो जो जिनके खिलाफ वो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, यानी कि आप इससे नाम से ही अंदाजा लगा लें कि वो पाक बलोचिस्तान को लिबरेट करना चाहते हैं। तो आप एक इंच भी आज तक ना लिबरेट करवाना तो दूर की बात, उस पर वो कब्जा नहीं कर सके एक जगह पे भी। तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान आर्म फोर्सेस या आर्मी जो है इस लेवल की प्रिपेयर्डनेस और उनकी कॉम्पिटेंस है कि उन्होंने दहशत गर्दों को ना कदम चबाने दिए हैं। यस, ये कि कहीं भी हो सकता है, आपने श्रीलंका में देखा 25 साल तक दहशत गर्दी रही, वो जो आपको वो जो तामिल टाइगर्स थे उनके खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी और दीगर ममालिक में इस तरह के वाकयात हैं और पाकिस्तान की आर्मी जो इस तरीके से वो बड़े अच्छे और मैं समझता हूँ कि बेहतरीन अंदाज में बेशक जानी नुकसान भी हो रहा है लेकिन दहशत गर्दों को भी कैफरे करदार तक पहुंचाने में तमाम जो तवानाई है वो सर्व कर रही है और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा भी कर रही है। अब दूसरी बात यह है कि आज 6 सितंबर है, उस हवाले से अगर हम अपने माजी को याद करें और आज का दिन हमें ये एक लेसन और पैगाम भी देता है कि जब भी कभी दुश्मन आपको कमजोर अंदरूनी तौर पर तसव्वुर करेगा या उसको महसूस होगा तो वो आपके बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो जंग के लिए अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करना शुरू कर देगा और आप पे जारियत का इरतकाब भी करेगा। तो इसलिए ये वक्त की भी जरूरत है कि अंदरूनी तौर पर हमें सियासी लिहाज से मजबूत होना चाहिए, कौमी इतिहाद होना चाहिए, मईशत ऊपर नीचे होती रहती है, इसमें नशे वो फराज आते रहते हैं, लेकिन जो कौमी सलामती के मामलात हैं और कौमी इताद के जो मामलात हैं इनको कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और इन पर स्पेशल हमें अटेंशन देनी चाहिए ताकि दुश्मन इस कमजोर पहलू को बांध कर या इसे फायदा उठाकर हमारे ऊपर किसी तरह की जारियत का इरतकाब ना कर सके। और 6 सितंबर में जो कुछ हुआ, आपने 10-17 दिन की लड़ाई थी और पहले कश्मीर में हल्की फुल्की कंफ्लिक्ट हुआ थोड़ी सी एक दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में झड़पें हुई छोटी मोटी और उसके बदले उसने पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस किया, उसने लाहौर पे, उसने सियालकोट के बॉर्डर पे, कसूर पे और फिर आपको